अंदर कपट सब कपटू कर जाने, कपटे कपे कपाई। सतगुर का पाणा चेतना वै अपने सुहाए फिराई। कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही। महला चौथा मनुख माया मोहे ब्यापे, दूजे पाए मनुआ तिर नाहे। अंदन जत रहे दिन राते, होमे खपे खपाए। अंतर लोभ महा गवारा, तिनके निकट न कोई जाए। ओ आप दुखी सुख कबो न पावे, जन्म मरे मर जाए। नानक बख्श ले प्रभु साचा, जो जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रपाया सही बिचखण जंत। जिनी हर त्याया अमृत नाम निधान, पूजन काया संत जना की तूर। मस्तक लाया नानक पहे पनीत, हर तीरथ नाया। श्लोक महला चौथा गुरमुख अंतर शांत।

जाते परम के लिए कमटाई सो रस कबीरे जानिया मेरो गुरस प्रसाद मन मानिया जय वाजना जी आ जाए जो मिले तका लकाए सद जीवन पुलो पलो कहाए मुए बिन जीवन नाहे अब क्या कथिए ज्ञान बिचारा निज निरखत गत बिवारा राव कस कुकमा चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जनदाता पाया सो दिया न जाई खाया छोड़िया जाए न मुका और न पह जाना चुका जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने कबीरे सो तन पाया हर पीठ ते आप मटाया क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पराना सुनिए पढ़े सुने क्या हुई जो सहजन मिलियो सोए हर का नाम न जप सगवारा क्या सोचे वारंग बारा रहा वो अंधियारे दीपक जइए एक वस्त गोचर लइए वस्त गोचर पाए कट दीपक रिहा समाए कहे कबीरे अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोक ना पतीजे तो क्या कीजे हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहाँ बलोप सपानी काया माजस कौन गुना जो कट पीतर है मलना राहो लोकी लोकी अड़सठ तीर्थ नाई कौरा पन तो ना जाए कहे कबीर बिचारी पव सागर पा तार मरारी सोरठ एक अंकार सतगुर प्रसाद बहु प्रपंच कर पर तन लियावे सुत दारा पहया नुलटावे मन मेरे भुले कपट न कीजे अंतन वीरा तेरे जी पह लीजे राव छिन छिन तन जीरे जरा जनावे तब तेरी ऊक कोई पानी ना पावे कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम के ना जपह सबेरा संतो मन पवने सुख बनया किस योग प्राप्त गनया राव गुरदख लाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाज लिए अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उबा करिया कौ कबीर जन जानिया तो कौ कबीर कहो कबीर कहो कबीर जन जानिया तो जो जानिया तो मन मानिया राग सोरठ भुखे भगत न कीजे जय माला अपनी लीजे हूँ मांगू संतन नेरा मैं ना ही किसे का देना माधो कैसी बने तुम संगे आपन देव तले तो भो मंगे राव दो सिर मांगू चूना पाऊ की हो संग लूना अद सिर मांगू दाले मुख दोनों भक्त जिवाले खाट मांगू चौपाई सहराना सिरहाना अवरत लाई उपर को मांगू खीदा तेरी भगत करे जन थीदा मैं ना ही कीता लभो एक नाओ तेरा मैं पब्बो कहे कबीर मन मान्या तो हर जान्या राग सोरठ बाणी भगत नाम देव जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तो तन ते तो जन धीरज पावा नाद समाई लियो रे सतगुर भेट ले देवा राव जय चिल मेला कारज संता तय अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादे जाने रतन कमल कोठड़ी चमकार बिजल ते ही नेरे नाही दूर निजात मेरे परपूरा जय अनहत अनहत सूरज आरा तै दीपक जले सारा गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहज समानिया कर चौथा सूरठ पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा कै पहचान शबाई हो तो पह दुगनी मजूरी देवो तो मोह को बेडी देहो बताई हो री बाई बेडी देन जाई देख बेडी रिहो समाई हमारे बेडी प्राण धारा राव बेडी

चाले मन तंतु आराधे हर के प्रीतम साधे जाके संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस कछु पटना सी की जय सोई भगत ज्ञानी त्यानी जप तपा सोई नानक जाको कृपा की जय तना श्री महला पंजवा मेर लाल लाल पलोरे पलोरे पलो हर मंगना देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन प्राण पत चित राख सगल है स्मरण रहाओ चंदन चुआ रस भोग करत अनेक बिखिया विकार देख सगल है फीके एक है गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन धन धन या था अपना था प्यो हर जापना निम्ह जा प्यो अर्थ दर्व देख कछ संगना चलना जा कोरे कर्म भला तिन उठ गई संत भला तिन ना हीरे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निधान मिटवे अभिमान एक निरंकार नानक मन लगना तना श्री महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर एक सिमर प्यारे कल कले सलो मोह महा पौ जल तारे रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरैन चितारे साध संग जपन संग मन निधान तारे चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद विचारे साजना कीरिन नानक मंगल सुख सधारे तना श्री महला पंजवा कर अठवां दुप दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले ए लोक परलोक संसहाय जत कथ मोह रखवाले गुर का बचन बस जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे भाई न सके जल रहाओ निर्तन को तन दिले कोटिक मात दूत जैसे बाले सागर में बहुत पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तना श्री

सकल मनोरथ पूर्ण हो मैं सिमरो तुमरा नाम रहाओ। जान तुम्हारे हृदय वास संतन का संग पामो। शोक अग्न में मन व्यापे आठ पहरे गुण गाओ। स्वास्थ्य व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभु जापन। नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जन्म ना छापन। इतना श्री महला पंजवा। मांगो राम ते सब थोक मानो को जाचत शरम पाई। प्रभु के सिमरन मोख रहाओ। कोख है मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकार है कोख। कृपा संसेव सच पाई दुह सहले लोक। आन चार बिहार है जेते बिन हर सिमरन फोक। नानक जन्म मरण पै कट मिल साधु बिन से सोक। तनासरी महला पंजवा। तृष्णा बुझे हर कै नाम मां संतोख हो गुरबचने। प्रभु सो लागे पूर्ण ध्यान रहाओ। महाकलोल बुझे माया कै कर कृपा मेरे दीन दयाल। अपना नाम दे जब जीवा पूर्ण हुए दास की काल। सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम। जिस कर्म लिखे जिसके कर्म लिखिया तुर करते। नानक जन के पूर्ण काम। तना श्री महला पंजवा। जन की कीनी पार ब्रह्मसार निंदक टिक न पावे मूले। उड़ गए बेकार हाओ। जह जह देखो तै तै स्वामी कोई न पहुंचन हार। जो जो करे अव गया जन के होए गया तत्सार। करण हार रखवाला हुआ जाका अंत न पारावार। नानक दास कर रखे प्रावे अपने निंदक कड़े मार। तनासरी महला पंजवा। करनावा पड़ताल को ओंकार सदगुरु प्रसाद। हर चरण शरण गोबिंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभु धारो।

मन बच कर्म हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो गुरमत सुन कुछ ज्ञान ना उपजेओ, पस ज्यों उधर परो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पतत धरो। तना श्री महला पहला कर दूजा अष्टपदी को ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरसागर रत्नी परपूरे अमृत संत चुकै नहीं दूरे हर जोग चुकै प्रभावे सरवर मैं हंस प्राण पद पावे क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए चीकी चढ़ डूबे मह न जाए रहाओ रख राख चार चरण तरे बेचारी दुबदा छोड़ फे निरंकारी मुकत पदार्थ हर चाखे आमन जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सह सुमाए सर्वर में हंस हंस मैं सागर अकत कथा गुरु वचनी आदर सुन मंडलिक जोगी बैसे नार न पुरख कहो कहो कैसे त्रिभुवन ज्योत रहे निवलाए सुरन ना सचे शरणाए अनंद रूप अनाथ धारी गुरमुख भगत सहज विचारी भगत वचल पै घट नहारे होमे मार मिले भगत हारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुबदा खूवे आप न चीन सुभ्रम पम रोवे कह तो पढ़ तो सुन तो एक धीरज धर्म तरणी तर टेक जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद को जो मन जी मन पते आए सच की सच निर्मल मैल न लागे गुर के शब्द परम पो पागे।

ते निवारणाधमकारणां पतित पावन माधो बिरद तेरा धन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरा माथे लागी ले धूर गोबिंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हों ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ पर हारी चरण सरन नामा बल तिहारी। इतना श्री भगत रविदास जी की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पति यार क्या की जय बचने तोर मोर मन माने जन को पूरन बीजय हौ बल बल जाऊर मैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो यह जन्म तुम्हारे लेखे कहे रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चेत सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बाणी सो जस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हिरदे धरो रचना अमृत राम नाम भाखो। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटै मैं तो मोल महंगी लई जी सटै रहाओ सा संगत बिना पौ नहीं उपजै भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हर्ष

तुमरी कृपा मह सूक निरे कोय न जानै तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हुए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सुवाए नानक कहु ना सी जई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस बसूले पाछै पावै एक बस्त कारण बिखोट गवावै एक पी ना दे दस पी हिरले तौ मूड़ा कहो कहां करे

माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्त यश वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आप सुपर करत गुमान अस्थिर भक्त साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या शरण पर निंदा सुनहे मिथ्या हस्त पर दर्भ कहि रहे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रचना भोजन अन्न सुवाद मिथ्या चरण पर बेकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन

जा साच बिना कहु वर सुचा बिरता ना बिना तन अंध मुख आवत ता कै दुर्गंध बेन सिमरन दिन रैन बृथा बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ रहत अवर कश्यवर कमावत।

जावत जन्मै मरै। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पुराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप आप करत नबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत। नेरा पाप सियाणप सगल ते रहत, सब कह जाने आत्म की रहत। जिस पावै तिस लय लड़ लाए, थान थनंत रहे आसमाए।

अब मन साचा मुख साचा सोए अवरण अपेक्षा एक बिन कोए नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सू सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक ज्यो बसुद्धा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी कै गुणाव नानु जो भाव का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे धारी उपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा मन अपने सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नान गिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सल किरीना तमरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी क्या पर उपकार माहा। ब्रह्म ज्ञानी क्या नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी लिए तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी क्या होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै क्या रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी कै नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जस करै प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइया ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइया। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी क्या सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाय अदाखुर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उतारा जो

संत के दुखन आर जा कटाया, संत के दुखन जमते नहीं छुटाया, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा ते हीन, संत के ते गुरु रखे ना कोय, संत के दुखन तान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पी तरै, संत के दुखन ते मुख पावै, संतन के दुखन काल ज्यो लवै, संतन के दुखन सर्प ज्यो न पाए, संत के दुखन त्रिग ज्यो न क्रमाए, संत के दुखन तृष्णा में जलाय, संत के दुखन सब कुछ लाय, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाहे, नानक संत पावै तो बिगत पाए, संत कनंदक माताई, संत कनंदक घंटे न पाई, संत कनंदक मा त्यारा, संत कनंदक परमेश्वर मारा, संत कनंदक राज तेहीन, संत कनंदक दुखियार दीन, संत कनंदक सर्व रोग, संत कनंदक सदा बेहोग, संत की निंदा दोख मैं दोख, नानक संत भावे तस्का पी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी का उडान लाग गया, संत के दुखी को सब त्याग गया, संत का दुखी मांकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म में मरा, संत के दुख ना सुखते टरा, संत दुखी को संत के दुखी को ना ही ठाव, नानक संत भावे तलाय मिलाए, संत का दुखी अद बीत टूटा, संत का दुखी कदे काज ना पहुंचा, संत के दुखी को ध्यान भरमाई है, संत के दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर दे थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाए, संत के दुखी को अवर ना रखना हार, नानक

तन संचो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माए सर्ब रोग नानक मिट जाए। जिस तन का उचार कुण टुटता वै सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुखो नित बाछ मीत सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करै भली करनी सा शोभा भज हर की सरणी। अनको

भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर सदा सदा प्रभु की गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्ट मां सुख होए हर रस पावे बिरला कोई।

सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इस पुन्नी शरदा सब पूरी, रब रहया सतसंग हजूरी। जिसका साधन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै।

नानक सागल सृष्ट का जेता जी जंतर सब ताक हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखत स कोय ना मारे सो मुआ जिस मनो बिसार तैस तज अवर कहाँ को जाए सब सरेक निरंजन राय।

बलिहार पूर्ण पूरहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जान आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रत पल जीअन बहु भांत जो जो रचियो सुत सहत आत जिस भाव तस लय मिलाए भगत करें हर के गुण गाए।

निरंकार बंधन तोर पै निरवैर अंधन पूजन गुर के पैर ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभु आपह मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्र परमानंद राम नाम तत करहु बीचा दुर्लभ

आनंदिकू अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दो ता गावो हरि केरा मंजिनी वसाया कह नानको आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा है घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सब सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया वागी शब्द कनेरी कह नान सचे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनाए वसिया जन इच्छा सब पुजाईया सदा कुरबान कीता गुरु बिट हो जिस दियां हे वडियाईया कह नानक सुनो संतो शब्द रहु प्यारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द घर सुभागा है घर सुभागा शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागी कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजी आनंद सुनो वड पा

अमृत वाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुमा सतगुर का

जिहदे चित्त विच आ जाए ना, सुरत विच आ जाए, उहदी कुलां दा उधार हो जांदा, कुलां दा। महाराज ने बख्शिश कीती, जिस तों आवै चित्त तिस नूं सदा सुख, आत्मक ऐसा सुख।

0: मिलता, दुख फिर नेड़े नहीं आता। दुख आ भी जावे फिर जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पै नहीं जाके कंचन माटी। अगे अगे होके बैठोगे तेरे चरणा च बेनती है, सारे उठ के अगे अगे आ जाओ। शाबाश भैन भी आ जाओ इधर, कोई नहीं बहुत बड़ा हाल, आ जाओ। आओ मेरी धियां सारियां, वीर सारे इधर बैठो, सारे कट्ठे हो के बहन दा। भाई गुरप्रीत सिंह पता अं पिंड जाने पहला काम यही होंगे कि सारे कट्ठे हो जाइए, सत संगत मिल जैसे मतलब शहद दियां मक्खियां बहिंदियां, इदा बहना चाहिए। शहद दियां मक्खियां कट्ठियां होके जुड़ के बहिंदियां। एक होर उन्हें बड़ा वड्डा गुण आ, एक मक्खी दूजी मक्खी डंग नहीं मारदी, जे कोई बाहरों आ जाए फिर नहीं छड़दियां, कट्ठियां होके पै जांदियां। अहीं कट्ठे रहना, जे बाहरों आण के कोई गल करेगा, 14 जंगा कीतियां ना महाराज जी ने, 14 ते 4 18। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किन्ने जंग कीते? 14। ते श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने 4 किन्ने हो गए? 18। ते सारे जंगा दे विच महाराज ने किते चढ़ाई करके नहीं गए, चढ़ाई करके जेड़ा आया चढ़ के उन्होंने जल पानी छकाया पूरा, सारियां जित्तियां, हार नहीं किते होई। सतगुरु ने तो की हारना, जिस दे होवे वल सो कदे ना हारदा, उही नहीं हारदा जिहदे वल गुरु हो जाए। गुरु नूं वल करन वास्ते गुरु वल तुरना पैंदा। आपां सारे तुर के आए, गुरु वल ही तुरे। चरण शरण गुर
1: एक पैंडा जाए,
0: सतगुरु कोट पैंडा
1: आगे होए लेता।
0: करोड़ां कदम सतगुरु जी लैण वास्ते साडे वड्डे भाग हन। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे, जिनके भाग वड्डे हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। अजन्ने आपां बैठे हैं, साढ़े वड्डे भाग है, बहुते विचार मन कथा बच के कहें ताडे बड़े वड्डे भाग साध संग जी, तुसी आए हो, तुसी नहीं असी सारे सानू महाराज ने बुलाया ना, आपे संगत
1: साध बहल है,
0: आपे आप रहमत कीती सानू सारे नू बुलाया। हुण अपने चरणा च बिठा करके पावन गुरबाणी का कीर्तन मेरे वीर जी आप जी नू श्रवण करा रहे सी। थोड़ा समा होर महाराज के चरणा च बैठीए,

0: अंदर अग लगी पई सी तृष्णा की अग ते महाराज कहिंदे गुरु साहब ने जो त्रौंका दिता ऐदा छिणकिया ना जो अमृत ते कहिंदे गुर चंदन सीतला ठंडा ठार हो गया। आप पुछो जिन्हां जिन्हां नूं त्रौंका मिलिया होए ठंडे कि नहीं, लैके भी जिहड़ा बंदा नाम नहीं जपदा फिर ठंडा ठार नहीं। राहो दी पंक्ति हर हर गुर गुर करत भरम गए, गुरु गुरु करांगे तां भरम मिटने ते फिर अंदर शीतलता, फिर मेरा मन सब सुख पा। दुनिया के सारे सुख झोली च पै जाने, सारे सुख की आत्मक सुख पढ़ते ना आप, दुख दारू
1: सुख रोग
0: सारे पढ़ते रह रस बोलो, दुख दारू
2: सुख रोग,
0: दुख दारू बनता ना सुख रुख दुखा का कारण बन जाता अगे की जान सुख आत्मक सुख मिल गया कोई दुख रहना ही नहीं। आत्मक सुख बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके झोलिया च पाए, आत्मक सुख मिलिया कोई परवाह नहीं। नेजियां टंगवा ले तत्ते सुरमचू बच्चों के अखर नेत्रां च फिरे गए, खोपरे लै गए दो दो फाड़क, केड़ा सुख मिलिया सी उन्होंने? यही बाणी उन्होंने पढ़ी है, यही नाम उन्होंने जपया, यही गुरु नानक साहब ने जपया, यही गुरु गोबिंद सिंह जी जपते रहे, उही अही जपते हैं। शरीर उन्हों का भी इदा का, पंच भौतिक शरीर साडा भी, क्यों नहीं फर्क पै रहा? असी जपते ही नहीं ना जपते। सवेरे उठ के लाया करो झूठा, चंगा झूठा मार लिया करो, वेख्यो नज़ारा फिर वह आनंद की है। पांच पांच मिनट शुरू करो, कहिंदे बल तो अंदर बल रहा, जल तो जल रहा, तौकिया गुरु ने ऐदा त्रौंका मारिया।

0: फिर उन्हें कहा भी तू गुरु को जा। किने कहा? उन्होंने कहा भी रब भी तू ही, गुरु भी तू ही, मैं केड़े गुरु को जावा? कहते नहीं, विधान बदल गया। हुण दसवें पातशाह ने ये चरण पौल नूं खंडे दी पौल च तब्दील कर दिता सी। तेनूं उन्हां दा वचन मनना पैणा। प्रथम रहत जे जान खंडे की
1: पौल शक है,
0: सोई सिंह प्रधान तुसीं सियाणे हो ना सियाणे। ते पिंडां दे विच पिंडां दे लोक साडे वर्गे थोड़े जे सिद्धे साधे हुंदे, उह फिर वचन गुरु दा मान। असीं इदां पिंडां च कीर्तन करदे, उहदा पहिलां नरोल ही कीर्तन करदे रहे, कथा नहीं विच। फिर असीं सारी तैयारी अंदर करनी पहिलां, ते महाराज की कहना चाहुंदे आ, फिर उहनूं विचार के भाई गुरप्रीत सिंह पता। फिर असी सारा पिंड इकट्ठा होंगे, सारे पिंड जो पिंड कीर्तन करीदा, साउंड सिस्टम सारा अपना, सारा कुछ उत्थे वाजे तपले महाराज नाल सिंह होंगे, फिर वह सुनते सारी गल। फिर सोमवार तो लैके शनिवार तक एको पिंड कीर्तन करके, शनिवार घर घर जाके नाम लिखने, तो ऐतवार अमृत संचार। बड़े जथे बने, बड़े आस्ट्रेलिया ने कह बेनती की, मैं कहा भी तुम न्यूजीलैंड तो मिलाते पांच प्यारे साहबान, ज मेलबर्न तो बुलाते, इतने कराया करो, ब्रिस्बेन से तुम कर ले। वह कहें जिन्हों कही था जी, वह कहें मेरे को नहीं, जिन्हों मर्जी पूछ लो कि भाई साहब पंजा से सेवा करनी, वो नहीं मेरा जीवन नहीं। तो तेरा जीवन नहीं तो तेनों पता तू कि रियायत की दस। अजी उत्तर बेनती की सवेरे अमृत वेले जिनी संगत आँगी, मैं पांच प्यारे साहबान अपने तैयार करिए इतने, तो अमृत संचार। नहीं भाई साहब जी साडा जीवन नहीं। तो मैं भी दसो तुम कि किरायत की दसो गुरु ने। नहीं नहीं किरायत नहीं की। तो मैं तुम चाहते नहीं साड़ी कौम वधे फुले? कौम किदा वधेगी? इहो तो तरीका महाराज ने बनाया कि पंजां दे पेश हो के अमृत छक लो तो कौम च रल जाओ मुड़ के। तुसीं फिर उन्होंने कहा, फिर ना लिखाए, फिर पांच छह जथे बन गए, सारे ना लिखाते भी असीं भी पंजां सेवा करांगे, असीं भी करांगे। 174 प्राणी, 12-13 तो वध नहीं, पहली बार 174 प्राणी अमृत छक गए। दोवां महीने च प्रचार पूरा जोर लाया। असीं कौन जोर लाउण वाले? सौदा तो सतगुरु जी का, जिन्हों देना किसी थ्रू। जिन्हें भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह भाई प्यारा सिंह जी, जिन्हें इस गुरु घर के सारे वर्ल्ड के जिन्हें ग्रंथी सिंह ने, सारे वर्ल्ड के जिन्हें कुछली जथे ढाडी जथे कीर्तनीए, ये सेलमैन ने। सौदा सतगुरु जी का है, इन्होंने सौदा अगे बेचना। हूँ कई सेलमैन पता की करते, चल तनखा मिली जानी आ, वो सौदा नहीं बेचते। जेड़े बेचते उन्होंने फिर चाबियां फड़ा देंदा, फड़ा ना चाबियां। मालक कहिंदा बेटा कल दुकान तू खोल ली, मैं लेट आ जाऊंगा, चाबियां दे दिंदा उन्हें। सौदा बेचो सही, इतने गोल गवाल वेखन की लोड़ ही नहीं। ये तो महाराज इन्ना कुछ देता बंदा, जेड़ा सिखी का प्रचार करता। मैं सुनिया वो कहिंदे कंधा थानी पैसे सुटती संगत उन्हां दे घर, प्रचार तो करो, करते नहीं। तो गुरु साहब की कृपा इन्निया रहमत हो जाए, इन्निया बख्शा सौदा। वह कहें भी हूँ मेरे को सीधा नहीं मिलना, तेन पंजां दे जाना पैना। आ सुनो नाले विचार करांगे।

अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शा कीतियां, भाई साहब होना ने काफ़ी संगतों कीर्तन द्वारा निहाल किया, कोटांड का शुकराना।

0: ऐसा सिमरो नित। फिर बोलो कबीर काम परे हर सिमरिए। सारे बोलो कबीर काम परे हर सिमरिए।
1: कबीर काम परे हर सिमरिए।
0: जो तो काम पैंदा उदो रब नू कहने वाहेगुरु जी महाराज मेरा काम कर दे। कहिंदे काम करके आया रोज आ ऐसा सिमरो नित। ऐसे वाहेगुरु जी नेता प्रति सिमरन कर, नेता प्रति याद कर, नेता प्रति चरणा जोड़। फिर होएगा कि अमरापुर वासा करो। बोलो अमरापुर। अमरापुर मृत्यु तो अमर कहिंदे मर कहिंदे मृत्यु मृत्यु नू मौत नू। तेरा निवास उत्थे हो जाएगा जब तेन मौत नहीं आएगी। अमरापुर वासा करो। हर गया बहौरै बित। हर गया बहौरै बित। इहदा अर्थ की बनिया गया गुआचा होया जिहड़ी चीज़ चलेगी। बहौरै बौड़ आउंदी है जिहड़ी चीज़ धन। बित कहिंदे धन नू कहिंदे ना वित्त मंत्री। बित ध्यान सुनो बड़े कमाल दा वचन। कहिंदे कबीर काम परे हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित। अमरापुर वासा करो। हर गया बहौरै बित। तेरा गुआचा होया धन तेनू फिर वापस मिल जाएगा। तो अं कह सा धन तो कोई गुआचा ही नहीं। गुआचा साढ़ा कोई धन गुआचा केड़ा। शाबाश। ये बड़ी खुश होंगी है ऐ खिड़ी रही। शाबाश। कई बहुत कृपा होंगी अंदरों बड़ों खिड़े रेंदे। हर गया बहौरै बित। कोई चीज़ गुआच गई साड़ी वो फिर मिल जाती। वो कि चीज़ गुआची है ऐ इन्हों पहला है कौन गुआच गया। नहीं फिर कि चीज़ गुआची। जो असी बच्चे से ना छोटे छोटे जो बाल अवस्था से उदो सा किसी वैर नहीं सी। आ बच्चे लड़ते निके निके फिर कट्ठे हो जाते। माँ प्यो कह भी देना उन्होंने खेलना फिर उदा खेडते कट्ठे खेडते हैं। कोई वैर है किसी बच्चा बिल्कुल निष्पाप हों। असी भी कितने निष्पाप से वो धन साडा गवाच गया। हुण साडे मन में कई फाइलां खुलियां उन्हें की क्या उत्थे की होया उन्हें खुलियां ना फाइलां। किन्नियां खुलियां फाइलां पहला खुलियां जो निके बच्चे एक हुण घर च गए वो बच्ची निकी जी कहिंदी मेरा बचता नहीं लभदा। उन्हों बस बचतता की सीमत मेरी चप्पल गवाच जा इन्ना गल्लां सी बस। असी भी कितने इदा करते वो धन साडा जिहड़ा गवाच गया सानू दुबारा मिलेगा। वो अवस्था बाल अवस्था फिर असी निष्पाप हो जाएंगे। फिर साढ़े वैर विरोध मुक जाएंगे जे असी रोज़ वाहेगुरु जी का सिमरन करांगे।